0: ब्रह्मज्ञानी जप सगत संसार।
1: ब्रह्मज्ञानी के रंग ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रभ संग।
0: ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार ब्रह्मज्ञानी का नाम परिवार।
1: ब्रह्मज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्मज्ञानी त्यागत।
0: ब्रह्मज्ञानी का मन परमानंद
2: ब्रह्मज्ञानी के सदा आनंद।
1: ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास

0: ऐसा भगवती भगवंत को पावे।
1: सो पंडित जो मन पर बुद्धा, राम नाम रतन में शुद्ध,
0: राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के अपदेश।

0: कर्मानं
1: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग
0: है सुभाए होवे सो होए करने हार पिछाने सोए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सात तैसा दृष्टाना
0: जिस ते उपजे तस माहे समाए ओए सुख निदान ओनु

0: नानक तिस बलहार अष्टपदी।
1: टूटी काटन हार गोपाल सर्व जिया अपने
0: पाल, सगल चिंता जिस मन माहे तिसते व्यथा कोई नाहे। आपन किया कछु न होए जैसो प्राणी लोचे कोए। रूपवंत होए नाही मोहे रब की जो सगल कट सोए। हाथ सुराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कहतावे। जिस गुर पर साथ टूटे हो रोग नानक सोजन सदा रोग। जो पाखान चर तरह प्राणी गुर चर लग निस्तर।
2: जो मां जान में मार्ग पावे जो साधु संग मिल जोत प्रगटावे।
0: मान मूर्ख का है मिल लाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। जो कष्ट करे सोई सुख मान भूला काहे प्रिय जान। राम नाम जप हृदय माहे नान पर से ती कर जाहे। पाजब मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तोल। तान तान कहे सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए। चरण साध के तोय तोय पियो अर्थ साध को अपना जियो। साध से रावण पाकी पाईये साध संग हर कीर्तन गाईये। कोट कही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया। सर्व जाति जाति सृष्टि माहे पुरब लिखे का नह न पाए। जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मले करनी। जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत। सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय।

0: राष्ट्रपति।
1: चरण सत सत पर संहार, पूजा सत सत सेवदार,
0: दर्शन सत सत पिंडहार, नाम सत सत ध्यानहार,
1: आप सत सत सब तारी, आपे गुण आपे गुणकारी,
0: शब्द सत सत प्रवक्ता, सुरत सत सत का सुनता,
1: जनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए,
2: सत स्वरूप हृदय जन मानिया, कर्म करावन तन मूल पहचानिया,
1: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया,
2: पैते निरभउ होए बसाना, जिसके उपजिया समाई समाना,
1: मस्त माहे ले

0: राता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जग जग में पार ब्रह्म एके आप नहीं का शरण
0: सह सियाणप लय न जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाइए
1: सबल दर्शन
2: पेखत पुनीत पर सचरण गत निर्मलित
0: भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे
2: सुनकर वचन करने करने मन तंतो का संपत्तिया ने
0: पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे होए संत
1: गुण व्यंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए
0: जेबा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन विवेक
2: काहु बोल न पोच प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई
2: अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरहै
0: सत बलिहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
1: अमृत पीवे मत सोए
0: उस पुरख का नाही

0: राष्ट्रपति।
1: संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार।
0: और पाप सामित विसारो, चरण कमल रिद में उतारो।
1: कर्ण कान सो प्रभु समराथ, दृढ़ कर कहो हो नाम हर बात।
0: यो तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत।
1: एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नारक मिट जाहे।
0: जिस तन को चार गुण उठता है, सो तन हर सेवा कृपा है।
1: जिस सुख को नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत।
2: जिस सोबा को करे पलि करनी, सा सोबा पल हर की सरनी।
1: आनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवकद लाए।
0: सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान।
1: मन पर बोधो हर कह नाए।

0: पवन मिटे प्रभ सेव आव त्याग सन गुर देव
1: जो रतन जन का होए उदार हर हर सिमरन प्राण आधार
0: अनक उपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे
1: हर की भक्त करहु मन लाए मन पंचत नानक फल पाए
0: सांगना चालस तेरा तना तू क्या लावटा वह मूर्ख मना
1: सोत मीत कुटाम या बनता इनते कहो तुम कवन सनाता
0: राज रंग माया विस्तारा इनते कहो हो कवन छुटकारा
1: हस्ती रात्रि सवा।

0: क्यों विसरे जिन सब कुछ दिया, सो को विसरे जिन जीवन जिया।
1: सो क्यों विसरे जी अग्नि में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै।
0: सो क्यों विसरे जे विखत काढे, जन्म जन्म का टूटा गाढे।
1: गुर पूरा ता तेहा बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया।
0: साजन संत करो हो काम, अंत अग जपो हर नाम।
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपो अवरह नाम जपावहु।
0: भक्त पाए तरिये संसार, बिन भक्ति तन होसी शार।
1: सर्व कल्याण।

0: नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन विक्षे सचरन तोए
1: भक्त जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग
0: एक वस्त दीजे कर मैया गुर प्रसाद नाम जप लिया
1: ताकी उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व सुमाए
0: प्रभु संत दीन दयाल भक्त बचल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा कर

0: शोकों से व्यापत
1: जब आपन आप आपार ब्रह्म तमो कहा किस होवत परम
0: सब मोह कहा किस होवत
1: आपन खेले।

0: अष्ट पदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समिगरी एक घट माहे अनक रंग नानंद सताहे
1: नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम।

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहरा साहिब हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहला तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेवया, अंत लय छाया एक ओंकार। सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहु करी न होई।

तेरी अनेक तेरी अनेक करे हर पूजा जी तब तप जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया घट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता।

तुद आपे भावे सोई वरत जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिर सब गोई।

जिसनो तू जानाए हे सोई जन जाने हर गुण सदी आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजई हर नाम समाया।

जब या करख करतो कबहूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जिते बदन सृढ़ सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेर नरालम जानत भेद भेदे अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि नील अनादि असंभ।

दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरगवाज रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे।

जी की फतेह। धन धन धन गरीब नवाज सतगुरु दसां पातशाहियां दा हिरदा स्वरूप बाणी के बोहित।

अनंत ज्योति कैसी आरती होए पव खन्ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन तेरी रहाओ सह सब नैन नैन है तो एको सह समूरत नायक तो ही सहस पद बिंबन एक पद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब मैं चानन होए गुरसा की ज्योत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरन लोभित मनवान दिनो मोहे आई प्यासा।

खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर ले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर साध न जानिया, तिन अंतर होमे कंडा है। ज्यो ज्यो चल है चुभे दुख पाव है, जमका सहे सर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंड।

तभी सरती वै अगन माहे हो प्राण कन कै सवै भरपू दान न्योली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संजम साधन निमख निम कर सी कटावै तो पी होमे मैल न जावै हर के नाम संसार कुछ नाहे नानक गुरमुख नाम जत गत।

अष्टपदी जय प्रसाद सत्य अमृत खाए तय ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावै तिस को सिमरत पन गत पावै जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याहे सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याजे त्याह बन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्या कथ वलवा।

जस कहत जय प्रसाद तेरे सकल सित ठाकै मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताकै। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सहसा सिमरो प्रभु चे। जय प्रसाद पाई दुलभ देह नानक ता की भगत करे। जय प्रसाद भूखन पहरी जय मन तस्मृत क्यों आरस की जय। जय प्रसाद असवास असवारी मन तस्को कबू ना विसारी। जय प्रसाद बाग में लखताना राग प्रोपर अपने मना। जैन तेरी मन बंत बनाई उठ सत से आई तिसे ते।

ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी भजे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए तो आखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की

आना सारा बैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निम करके गुण गाए, अनक राज भुग बढ़िया आयर के नाम की कथा मन भाई। बहु पूजन का प्रसंगेत, रसना जपती हरा नीत, भली भली सो करनी सो बात।

बृहस्पति जावाकारिक चुनाधिष्ठा पा पौंथा कहते होता जब धारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संक कुमात जब इसका वर्ण चहना जापत तब हर खो कहो किसे व्याप्त जब अपने आप वा पार भ्रांता मोह कहाँ किसे उपत भरम अपन केला प्रतीजा नानक कर निहार न दूजा जब होबत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहसो आए तब सहस्कृत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन डर कवन कत डर है अपन चले ते आप करने हार नानक ठाकर अगम पार अविनाशी सुखे अपने आसन तय जन्म मरण को कहाँ बनासन जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कहो किसे होए जब अब कहते हो गोचर भवेखा तब चित्र को पूछ लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाते तो कौन छूटे कौन बंधन बाधे अपन आप पापी चर जा नानक अपन रूप पापी ऊपर जा यह निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या होता जय निरंजन का निर्वाण तय कौन को मान कौन अपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिदर लग को किस जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसे भूख कवन ते बतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुवार जब अपनी सुवा अपन संग

अवतार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण धन काय हो सुहाओ, आठ पैर प्रभु पेखो नेरा, मिटे ज्ञान बैंसे देरा, सुन उपदेश हर दे बसाओ, मन इछे नानक फल पाओ, हालत पालत दोइ लियो सवार, राम नाम तुरदार, पूरे गुर की पूरी दिखया, जिस मन बसे साच प्रिख्या, मन तन नाम चपोले बुलाए, दुख दस मन ते पो जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहु ना आवै जाए, तैसते दूर कहाँ को जाए, उभरे रखन हार ते आए, निरपो जपै सकल भव मिटे, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभु रखे तिस नाही दुख, नाम जात मन हो सुख, चिंता जाए मिटे हंकार, तै जन को कोई ना पहुँचन हार, सर्व पुर ठंडा कर सूरा, नानक ता के कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाके दैष्ट, दर्शन पेख दुदर श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर रूप, धन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे।

निकट काल पे एक सासा सिमरो गोबिंद माने अंतर की उदरे चेंद आस अनित त्याग उतरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साह संग अगन सागर थरो हर तन के पाले भंडार नानक पुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साह संग पज परमानंद नरक निवार धारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी।

कृत हैं, अकृताकृत हैं, धरणी कृत हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजबाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवभंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जाप जापण हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकार हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मवास हैं, जासके जास हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राजराजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आसुआसे, नमो बांक बंके, अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक श्री छंद, अजय अलय अभय अभय अपूव अजू अनास अकास अगंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद, नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे, त्रिकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते, सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी, अजायब विभूते गजायब गणिमे, हरियंग करियंग करिमल रहीमे, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव सु

पहने अनुमानत महामूढ़ कछु भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखन न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही भूपा अंड जेर से तजकीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरे सेठ दिखाए अचम भव आ जुगा स्वरूप संयम भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय हैं ताके काल निकट नह आय हैं। रक्षा होए ता है सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दिष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न दिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो यह सुरसना पावई सुनै मूढ़ चितलाय चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकना तिन नर के रह हो जो या कि एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस पुण तीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंग तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुह बखान्यो दोहरा सगल द्वार।

जा मन लहे सचनाऊं, सतगुर अपना मनाए ले, रूप चढ़ी ता अगला, दूजा नहीं था वो। गुरु अमरदास पातशाह महाराज अज दे हुक्मनामे विच आत्मा ते परमात्मा दे मेल बारे उपदेश बख्शिश कर रहे। आत्मा सुहागण तां होएगी, उदाहरण दिती है एक पतिव्रता औरत दी, सुहागण दी। सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी जिन्नी भी बाणी है साध संगत, ये आत्मा ते परमात्मा दा मेल है। किमें करना है, बाहर दियां उदाहरणां दे दे के समझाया गया है, खेड सारी अंदर दी है। बाणी दे विच दो तरह के रंगों का जिक्र आया, एक रंग है सूहा रंग, दूआ रंग है मजीठ का। मजीठ का रंग हुंदा है पक्का, जिस कपड़े नूं एक बार चढ़ गया मुड़ के लहिंदा नहीं। जिहड़ा सूहा रंग हुंदा है उहदे ते पानी का छिट्टा पाओ नाले वह रंग खिंड जाता। गुरु अमरदास पातशाह महाराज इस पावन पुत्र शब्द दे विच सुहागण नूं कह रहे ने, आत्मा नूं कह रहे ने, हे सुहागण, हे आत्मा, जिवें एक सुहागण अपने आप नूं तैयार करदी है, अपने चेहरे ते रंग लगाउंदी है, पर रंग उह पक्का तां होएगा, भावें अपने आप नूं तैयार भी कर लवे, रंग भी लगा लवे, पर जिहड़ा उहदा पति है उहदा हुक्म ना मन्ने, उहदे कहे अनुसार ना चले, उह लाया होया रंग सूहा है, कच्चा है। हुण दूसरे पासे आ जाइए, आत्मा ते परमात्मा दा मेल है। गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे ने, हे इंसान, तू उपरों उपरों जिन्ना मर्जी अपने आप नूं सोहना बना लै, पर जिन्ना चिर तेरे हिरदे विच परमात्मा दा नाम नहीं टिकदा, ये उपरला जिहड़ा तेरा पहरावा है ना, ये कच्चे रंग की तरह ही रहेगा। ये पक्का ताई होएगा जेकर तू हिरदे विच नाम भी वसावें। सूहबता सुहागणी जा मन लह सच नाम। परमात्मा दा नाम वसाउंदा नहीं, गुरु दे उपदेश नूं हिरदे विच वसाउंदा नहीं, ते परमात्मा दा नाम रूपी रंग किवें चढ़ेगा, उस मालक दे मार्ग ते किवें चलेगा।

सगल समग्री तुम रे सूतर तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी। बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याए। फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस जिठे सब दुख जाए। देख बहादुर सिमरिया कर नौन आवै ताए।

अहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। हो वै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे साहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वे साहू।

प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना पाई मन उहां नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्रयाण दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे आत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे। सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया। ला करूरी बंद ना परे हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत आघावे। जह मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई नान गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लखबाई नाम जब तह पार पराही। अनक बिगन जय आए संघारे हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जोन जन्मै मर जाम नाम जब पावे विश्राम। हौ मैला मल कभू ना धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध कै संग। जे मार के गने जाए ना कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा। जेह पैडै महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को ना संजानू हर का नाम तह नाल पछानू। जह मार्ग जह महाप्यान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहा त्रिखा मन तुझ आ करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरत नाम संजना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात हर हर औख साध कमात। हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बिबे कै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे ना भंग। हर का नाम जन की वड्याई हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओट सुतानी हर प्रताप जन अभर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर ग्यपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बह करे जन नानक जन संग केते तरे। पार जाति हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संगवट भागी पाइए संत की सेवा नाम त्याइए। नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई सलोक।

नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खस शास्त्र बिकसिमृत वख्यान जोग अभ्यास कर्म त्रम किरिया सगल त्याग बन मधे प्रिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राति व्रत नियम करे बहु पाति नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव महा उदास पीसर थी वह अगन माहे हो मत प्राण अनक अस कनक असु है वर भूम दान नौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो पी हो मैं महल न जावे हर के नाम सम सरकश नाहे नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर दे छुटे गर्भ गुमान ना मन ते हटे सोच करे दिन सर रात मन की मैला तंते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहु ना बिखिया टरे जाल तू वह बहो देह अनीत सुध कहा होए काची पीत मन हर के नाम की महमा उच नानक नाम उदरे पतत बहमूच।

ज्ञानी के नाही अपमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, माने अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल करीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लै तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभु संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभया, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय अदाखर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने। ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। सलोक उर तारे जो अंतर नाम, सर्व मैं पेख्य भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तारे। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स। पर त्रै रूप ना पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की बासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न। बिसन की माया ते होए पिन, कर्म करत हो वह नह कर्म। तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल। सब ऊपर होवत कृपाल, आदृढ़ अवरै नाम जपावे। नानक ओह बैसनो परम गत पावे, भगौती भगवंत भगत का रंग। सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला भरम। कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध, संग पापा मल खोवे। तिस भगौती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत। मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे। नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे। राम नाम आत्म में सोधे, राम नाम सारस पीवै। उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावे। सो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण सिमृत बूझै। मूल सूखम मह जाने असथूल, चौं वर्णा को दे उपदेश। नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्प ज्ञान। चौं वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए। साध संग पावे जान कोई, कर कृपा अंतर उर तारे। पास प्रेत मुगध पाथर को तारे, सर्व रूप का औखद नाम। कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कते ना पाइए। धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुहर कर्म।
ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰਬਨ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਰੇ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਣ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਪਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੇ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ ਪ੍ਰਪਾਵੇ ਸੋਈ ਪੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ।

संस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना।

जिस सुख कौ नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा बज हर की सरनी अन के।

अनके उपावन छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न जालस दे रह तना तू ज्ञान लपटावे मूर्ख मना सो तमीत गुटांबर बनता इंते कहो हो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इंते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंब झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना विगाना नाम विसा नानक पछताना गुर की मातु लिह आने भगत बिना बड़ू बेस्याने

आय अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवधान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मे सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नितनीत एक ओट एक को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मां सुख होए अरस पावे विरला कोय जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुभर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध के संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगास अंधन लिवलाग वडभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेव कीनो सदा निहाल बंधन गाट मुख जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुनी सरदासा बूरी रब रया सत्संग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए।

फिर जा पशुपदे। जब अकार्य कछ न दृष्टिता, पाप बंधव कहते होता, जब धारी अपन सुन समान गता, बैर विरोध के संग मात, जब इसका वर्ण चिन्ह जापत, तब हर किसो को किसे व्यापत, जब आपन आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किसोपत परम।

अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जो तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलते आप करने हार, नानक ठाकुर अगामी अपार। अविनाशी सुख अपने आसन, दे जन मरन को कह विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभ एखा, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा।

राष्ट्रपति आप कथया सुनने हारिया पै का विस्तार जा तिस भावे ता सृष्टि उपाय अपने भाणे ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए अपन सू सब जगत परोए जा को प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सकल सृष्टि का जेता जी जंतर सबता के हा दीन दयाल नाथ को नाथ।

सगल समगरी तुम रैसु तर तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु।

0: गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी जी, कीर्तन करते हुए बेअंत गलतियां की खिमा बख्श देनी। आओ जी, रसना पवित्र करो, असीस बख्शो, फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल प्रीजे जियो। बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन अपने गुरु घर का हजूरी रागी जथा भाई साहब भाई हरबख्श सिंह जी आप जी ने सरवण करा रहे सन। भाई साहब जी के समुचे जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारे, जिमें आप जी ने पिछले दिन भी दसिया गया सी कि अपने गुरु घर विखे 4 जुलाई दिन शनिश्चरवार खंडे बाटे का अमृत जो तैयार हो रहा है, जिहड़ियां भी संगतां ने हजे तक अमृत नहीं छकिया, भाई उन्हां नूं बेनती है जरूर आप उपराला करो। 4 जुलाई दिन शनिवार शाम के 3 बजे केसी इशनान करके गुरु घर विखे पहुँच के जो खंडे बाटे का अमृत है छक के गुरु वाले बन की कृपालता करो। अपने गुरु घर विखे 2, 3, 4, 5 इन्हां डेटां दे विच दोदड़े की संगत वालों एक बड़ा महान कीर्तन दरबार जिहड़ा है, कीर्तन समागम हो रहा है, जिहदे विच करीबन करीबन 400 तों 500 संगतां जिहड़ियां है बाहरलिए स्टेटां तों अपने गुरु घर विखे होणगियां। कैनेडा तो भी काफ़ी संगत जिहड़ी है हमेशा ही अपने वह इन्हां समागमां दे विच आउंदी है। उन्हां दी रहायश लई आपां सारिआं ने जिहड़े है इत्थे जतन करना है कि वध तो वध संगतां नूं अपने घरां दे विच जिहड़े है 2 रातां जां 3 रातां दी जिहड़ी उन्हां दी रहायश होएगी उहदा प्रबंध जिहड़ा रल मिल के करिए तां कि गुरु घर अलस बराटे विखे ये जो बड़ा जप तप समागम जिहड़ा है, कीर्तन समागम हो रहा है, उहदे विच आपां क्योंकि 2-3 दिन जिहड़े 4 दिन 4 दिन का समागम है, 4 दिन जिहड़ा है सवेरे 3 बजे तो जिहड़ा महाराज का प्रकाश हो जाया करेगा, बाद विच जो नितनेम हो के 12 बजे तक निरंतर जिहड़ा कीर्तन होया करना वीरवार तो शुरू हो के ऐतवार तक, और 12 बजे तो 3 बजे तक ब्रेक होंदी है, 3 बजे तो 9 बजे तक शाम के जिहड़ा फिर दुबारा जिहड़ा कीर्तन होया करना है। उत्तों बाद संगतां ने घरां नूं जाया करना, सिर्फ तो सिर्फ घर घर जा के संगतां एक सौंदियां ही हन, वह रहायश का प्रबंध जिहड़ा है आपां जिहड़े किसी भी मेरे वीर भैण को साध संगत को उन्हां दे लई कोई एक कमरा 2 कमरे जिहड़े होण वह जरूर 1-2 जने आप घर विच ले जा के जिहड़ा है संगतां नूं जिहड़ा है ठहरा सकते हो। ये आप जी नूं सुनिमर हथ जोड़ के बेनती है, और अमृत जिहड़ा है जरूर आप छकन वाले प्राणी जिहड़े आ केसी इशनान करके नवें वस्त्र पहन के शाम 3 बजे 4 जुलाई दिन शनिश्चरवार को गुरु घर विखे पहुँच के जो खंडे बाटे का अमृत जो छक सकते हो, ये भी आप जी सुनिवर हाथ जोड़ के बेनती है। और दूसरी बेनती, गुरु अंगद देव खालसा स्कूल का जो नवा सैशन जोड़ा है वो शुरू होना है, वो रजिस्ट्रेशन जी हो रही है, अपने जरूर बच्चों जोड़ा है वो गुरु घर लेके आओ, छोटे बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराओ, और अपने बच्चों गुरमत दे धारनी बना के गुरु अंगद देव खालसा स्कूल दे जिहड़े वलंटियर वड्डा उपराला कर रहे हैं सारे मेरे वीर भैण रल के जिन्हें भी टीचर साहबान हैं सारे वलंटियर हैं उन्हों का बहुत तहल दिल तो धन्यवाद है कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो वह गुरु घर के जिहड़े छोटे बच्चे हैं उन्होंने तराश के स्टेज पर बैठन योगा कर रहे हैं, वड्डियां उन्हां दियां सेवावां हैं उन्हां तो भी बलिहारे जाने हैं। और दूसरा जो साढ़े गुरु घर के स्टाफ मैंबर हैं जो इन बच्चों नूं गुरमत विद्या जिहड़ी दिंदे हन भावें वह कीर्तन रूप में होवे तबले रूप में होवे महाराज जी की बाणी की संथ्या होवे उन्हां दे भी असीं बहुत धन्नवादी हाँ जिहड़े साढ़े गुरु घर का स्टाफ इन छोटे छोटे बच्चों नूं जो गुरमत की विद्या ग्रहण करा रहा है। गुरु प्यारिओ, अपने पास भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी विद्यार्थी दमदमी टकसाल पिछले सोमवार तो गुरु शब्द की कथा द्वारा हाजिरी भरते आ रहे हैं, 1 वीक उन्हों की होर है अपने गुरु घर विखे, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ, ਕੇਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ।

0: प्रिय होत अंत अंधार
1: बताओ सो जो लावे निहिता को हाथ ना लगे
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
1: विद्या दान।

0: सफल दे नान हर हर नाम ले
1: व्यक्ति साथ की आर्जा साथ बिना कहो बत सुचा
0: मिथ्या नाम बिना तन अंध मुख आवता के दुर्गंध
1: विश्व मंदिर

0: प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे वसना,
1: जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण बल है,
0: जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समावे,
1: ऐसा प्रत्याग अमर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल ना मनो विसार।

0: राष्ट्रपति
1: सात के संग भूजल होत सात संग मल सगली खोत
2: सात के संग मिटे अभिमान सात के संग परके सुजान
1: सात के संग बुझे प्रभ नेरा सात संग सब होत निवेरा
2: सात के संग पाए नाम रतन सात के संग एक ऊपर जतन
1: सात की महिमा बढ़ने कौन प्राणी नानक सात की शोभा ब्रह्माए समाणी
2: सात के संग गोचर मिला सात के संग सदा पर पुला
1: सात के संग आवे बस पंचा सात संग अमृत रस पंचा
2: सात संग हुए सबकी देन सात के संग मनोहर दैन
1: सात के संग न कथु तावे सात संग अस्तत मन पावे
2: सात के संग माया ते भिन्न सात संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: सात संग दुश्मन समीत साधु के संग वहाँ पुनीत
2: सात संग किस्यो नहीं बैर सात के संग न बीता पैर
1: सात के संग नाही को मंदा सात संग जाने परमानंदा
2: सात के संग नाही हो ताप सात के संग सज सब आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई
2: सात के संग न कछु पावे सात के संग सदा सुख पावे
1: सात संग बसत अगोचर लह साधु के संग अजर सह
2: सात के संग बसत आनंद साधु के संग मैल पहुंचे
1: सात के संग दृढ़े सब धर्म सात के संग केवल पाठ ब्रह्म
2: सात के संग पाए नाम निधान नानक साधु का दरबार
1: सात के संग सब गुण उधार सात संग साजन मी

0: सात संग धर्म राय करे सेवा सात के संग सोभा सुर देवा
1: साधु का संग पाप लाए सात संग अमृत गुण गाए
0: सात के संग सरब थान गम नानक सात के संग सफल जन्म
1: सात के संग नहीं कष्टकाल दर्शन भेट को होत निहाल
0: सात के संग कलुख धरे सात के संग नरक पर हरे
1: सात के संग इहा उहा सुहिला सात संग विचित्र हर मिला
0: जो इच्छा सोई फल पावे सात के संग न व्यर्था जावे
1: पार ब्रह्म सार रिद्धि नानक पुत्र सात संग
0: सात के संग सुनो हर नाओ सात के संग
1: सात
0: सात संग हर के गुण गाओ
1: सात के संग न मनते बिसरा सात संग सर पर निस्तरा
0: सात के संग लगे प्रमीठा साधु के संग कटकर डीठा
1: सात संग पै आज्ञाकारी सात संगत पै हमारी
0: सात के संग मिटे सब रोग नानक सात पेटे संजोग
1: सात की महिमा वेद न जाने जेता सुनहि ते तब पियाने
0: सात की उपमा ते गंते दूर सात की उपमा रही भरपूर
1: साल की शोभा का नहीं अंत साल की शोभा सदा बेअंत
0: सात की शोभा उच्चते ऊंची सात की शोभा मुझते

0: जैसे जन्म कमल अलेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक जो बसा को खोदा को चंदन देव
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक गुनाओ नानक ज्यों पावक का

0: ऊंच, मन अपने है सब ते नीच।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा।

0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अता अदा।